0: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
0: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम?
2: Well, this song is South versus North.
0: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बिनहर वो इंग्लिश
2: Well, let's all get them to the song right now. It's good music.

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम
0: अच्छा
1: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडलबाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: प्यार का मौसम
0: बेशरम
1: सत्यम शिवम सुंदरम
2: एवरीबॉडी

0: सही गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।
1: My Tulsi, तेरे आंगन में, how beautiful the sound।

नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज की पहचान है कर याद रहे Yes, the name will be lost, the face will change over time. My voice is my only identity, if only you can remember it.

अरे वाह, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा. Yes, life is also an ocean of sorrow. Smilingly, we must all cross over to the other side. Welcome to Indian Melody Times, my friend.